0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापान के वजीर दिफा कोइज़मी शिंजिरो ने इस बात का इयादा किया है कि जापान की अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने की कोशिशें आला शफाफियत के साथ की जा रही हैं। कोइज़मी ने इतवार को सिंगापुर में एक आला सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर की, जिसे शंग्रेला डायलॉग कहा जाता है। उन्होंने जापान की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के इकदाम और वजीर आजम ताकाइची सानाई की हुकूमत के तहत दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी की मुंतकली के फ्रेमवर्क पर नजरसानी की वजाहत की। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का मकसद एक आज़ाद और खुले खित्ते के अमन और इस्तेकाम में किरदार अदा करना है। चीन ने इन इकदाम को नई अस्क्रियत पसंदी करार दिया है। कोइज़मी ने तनकीद को रद्द करते हुए कहा, एक ऐसा मुल्क है जिसके पास जोहरी हथियारों और स्ट्रेटेजिक बम्बारों का बहुत बड़ा जखीरा है। जापान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है और फिर भी जापान को नई अस्क्रियत पसंदी का नाम दिया है। क्या ये अजीब बात नहीं? कॉन्फ्रेंस में दो तरफा वजारती मुजाकरात नहीं हुए क्योंकि चीनी वजीर दिफा ने फोरम में शिरकत नहीं की। कोइज़मी ने कहा कि ये अफसोसनाक था, लेकिन यह भी कहा कि वो इख्तलाफ राय के बावजूद बीजिंग के साथ बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। तकरीर से पहले कोइज़मी ने अपने फिलिपाइनी हम मनसब गिलबर्टो योडोरो के साथ मुलाकात में करीबी दिफाई तआवुन की तस्दीक नौ की। उन्होंने जापान के इस्तेमाल शुदा आबू कुमा दर्जे के तबाहकुन बहरी जहाज की फराहमी पर गौर किया। दोनों ममालिक ने उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया कि जापान की बहरी सेल डिफेंस फोर्स से रिटायरमेंट के बाद जहाज को फौरी तौर पर फिलिपाइन मुंतकिल किया जाए। बातचीत के बाद योडोरो ने एनएचके को बताया कि दोनों ममालिक बहिराए जनूबी चीन और बहिराए मशरकी चीन में चीन की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार करते हैं। चीन के कोस्ट गार्ड का कहना है कि उसने ताइवान के मशरक में पानियों में गश्त की है और जापान और फिलिपाइन को उनकी समंदरी हुदूद की बातचीत पर तनकीद का निशाना बनाया है। कोस्ट गार्ड के एक तर्जुमान ने पीर को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि गश्त दोनों ममालिक के इस ऐलान के जवाब में एक जरूरी कार्रवाई थी कि वो पानियों में समंदरी हदूद के तयन पर बातचीत शुरू करेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि ये इकदाम चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी और समंदरी हुकूक और मफादात की संगीन खिलाफवर्जी है। उसने जापान और फिलिपाइन पर जोर दिया कि वो ऐसी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करें। जापान की वजारत खारजा का कहना है कि 28 मई को जापान फिलिपाइन सरबराही इजलास में जारी करदा एक मुश्तरका बयान में समंदरी तआवुन का इहाता किया गया था। बयान में कहा गया है कि दोनों फरीकों ने खसूसी इक्तसादी जोन की समंदरी हदूद और दोनों ममालिक के दरमियान बर आजमी हदूद का तयन करने के लिए बाजाब्ता मुजाकरा शुरू करने का फैसला किया। टोक्यो के कलीदी हिस्से इशारिये निक्के 225 ने पहली बार 67,000 की सतह को उबूर करके अपनी तारीख की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर ली है। ये इजाफा न्यूयॉर्क में तीन बड़े इशारियों के रिकॉर्ड बंद भाव के बाद हुआ है। निक्के इशारिया पीर के कारोबारी दिन के आगाज पर ही तेजी से बुलंद हुआ और एक मरहले पर 900 पॉइंट्स या 1.3% से ज्यादा बढ़ा। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाजे के खात्मे के लिए मुजाकरात में पेशरफ्त पर सरमायाकारों की तवक्कुआत ने जुमे को वॉल स्ट्रीट पर लेन देन को तहरीक दी।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। ज़राए इब्लाग के एक अमरीकी इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त के मुसवदे में तरमीम चाहते हैं। शदीद तूफान बादोबारा चनमी ओकिनावा के मरकजी जजीरे के करीब पहुंचने से वहां इंतहाई तेज हवा चल रही है। जापानी वजीर दिफा ने इयादा किया है कि जापान की दफाई सलाहियतें मजबूत बनाने की कोशिशें आला शफाफियत के साथ की जा रही हैं। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 1 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के एक मीडिया केंद्र के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौता ज्ञापन मसौदे में संशोधन करना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक में इस दस्तावेज पर चर्चा

हुई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने शनिवार को यह खबर सबसे पहले दी। मीडिया केंद्र ने प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी और इस मामले से परिचित एक अन्य सूत्र के बयानों का हवाला दिया। खबर में ये कहा गया है कि मौजूदा मसौदे में ईरान की ओर से परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है, लेकिन इसके अलावा ज्ञापन में कोई विशिष्ट रियायतें नहीं हैं। खबर में प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप चाहते हैं कि मसौदे में ये शामिल किया जाए कि अमरीका ईरान से संवर्धित यूरेनियम कब और कैसे प्राप्त करेगा। इस खबर में दूसरे सूत्र के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने से संबंधित कुछ हिस्सों में संशोधन भी करना चाहते हैं। खबर में प्रशासन अधिकारी ने बताया कि समझौता हो जाएगा। उसका कहना है कि अमरीकी पक्ष इंतजार करेगा ताकि राष्ट्रपति की मांगें पूरी हो सकें। इस बीच ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा है कि तेहरान भी संभावित मसौदा दस्तावेज में और संशोधन करेगा। सूत्रों के अनुसार यदि दोनों पक्ष समझौते पर नहीं पहुंच पाए तो ईरान इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान छांगमी ओकिनावा के मुख्य द्वीप की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण बेहद तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को तेज हवाओं, ऊंची लहरों और भूस्खलन के प्रति सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार सोमवार दोपहर तक छांगमी नाहा शहर के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में था और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। एजेंसी ने यह भी बताया कि मंगलवार तक ओकिनावा और अमामी में हवा के झोंके 162 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। तेज हवाओं से ओकिनावा के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। नाहा शहर में दमकल कर्मियों को एक लकड़ी के बिजली के खंभे को इमारत से बांधना पड़ा ताकि वो गिर ना जाए। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में ओकिनावा और अमामी में 250 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। आशंका है कि बुधवार तक तूफान पश्चिमी से पूर्वी जापान की ओर बढ़ जाएगा। इससे जापान के प्रशांत तटवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को मुख्य रूप से ओकिनावा आने जाने वाली लगभग 400 उड़ानें रद्द कर दी गईं। मंगलवार के लिए निर्धारित 160 से अधिक उड़ानें भी अब रद्द कर दी गई हैं।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने एक बार फिर कहा है कि जापान अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के प्रयास पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहा है। कोइजुमी ने रविवार को सिंगापुर में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन शांग्रीला वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ताकायची सानाए के नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता मजबूत करने के कदमों और रक्षा उपकरण व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था में किए गए संशोधन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य स्वतंत्र एवं मुक्त क्षेत्र की शांति व स्थिरता में योगदान देना है। चीन ने इन कदमों की आलोचना करते हुए इन्हें नया सैन्यवाद बताया है। कोइजुमी ने इस आलोचना का विरोध करते हुए कहा कि एक देश ऐसा भी है जिसके पास परमाणु अस्त्रों और सामरिक बमवर्षकों का विशाल भंडार है। जापान के पास इनमें से ऐसा कोई हथियार नहीं है, फिर भी जापान पर नए सैन्यवाद का लेबल लगाया गया है। क्या ये अजीब नहीं है? चीन के रक्षा मंत्री इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते कोई द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय वार्ता नहीं हो पाई। कोइजुमी ने इसे दुखद बताया, लेकिन साथ ही कहा कि मतभेदों के बावजूद वे चीन के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाषण से पहले कोइजुमी ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबेर्टो तेओदोरो से मुलाकात कर घनिष्ठ रक्षा सहयोग की पुष्टि की। उन्होंने जापान के इस्तेमालशुदा अबुकुमा श्रेणी के विध्वंसक पोत को फिलीपींस को हस्तांतरित करने के बारे में चर्चा की। दोनों देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए कि जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल से सेवानिवृत्ति के बाद इस पोत को शीघ्र ही फिलीपींस को देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वार्ता के बाद तेओदोरो ने एनएचके को बताया कि दोनों देश

0: दक्षिण और पूर्वी चीन सागरों में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं। चीन के तटरक्षक बल का कहना है कि उसने ताइवान के पूर्व में समुद्री गश्त लगाई है। तटरक्षक बल ने समुद्री सीमा वार्ता के लिए जापान और फिलीपींस की आलोचना भी की है। तटरक्षक बल के प्रवक्ता ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों ने इस जल क्षेत्र में समुद्री सीमा निर्धारण वार्ता शुरू करने की योजना पेश की है, जिसके जवाब में गश्त लगाना आवश्यक था। वक्तव्य के अनुसार ये कदम चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों व हितों का गंभीर उल्लंघन है। वक्तव्य में जापान और फिलीपींस से ऐसी हरकतें तुरंत रोकने का आग्रह किया गया है। जापान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 28 मई को जापान फिलीपींस शिखर वार्ता में जारी संयुक्त वक्तव्य में समुद्री सहयोग के मुद्दे को शामिल किया गया था। इस संयुक्त वक्तव्य में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच अनन्य आर्थिक क्षेत्र और कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट की समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। टोक्यो के प्रमुख शेयर सूचकांक निक्केई 225 ने पहली बार 67,000 का आंकड़ा पार कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। न्यूयॉर्क में तीन प्रमुख सूचकांकों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद निक्केई ने यह मुकाम हासिल किया है। सोमवार को कारोबार की शुरुआत में निक्केई में उछाल दर्ज किया गया और एक समय में ये 900 से अधिक अंक यानी 1.3% तक बढ़ गया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्ति वार्ता में प्रगति संबंधी निवेशकों की उम्मीदों के चलते शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर जमकर लिवाली हुई। 0.7% की वृद्धि के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक सूचकांक पहली बार 51,000 का आंकड़ा पार कर गया। नैस्डैक और S&P 500 सूचकांक में भी मामूली बढ़त दर्ज की गई, जिसके चलते वे भी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।